0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट ऑन स्टेज, एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. This is what makes me love my zindagi. So on that note, ladies and gentlemen.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज, गुड बैड बिटर स्वीट डार्क लाइट समर विंटर, एक्सपीरियंस ऑल द ड्यूअलिटीज। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द मोर मैच्योर यू बिकम। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम स्वागतम खैर मकदम। आप सोचेंगे कि आज समर को क्या हो गया, आते ही बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। वेल, ये जो मैंने कहा ओशो का ये स्टेटमेंट है और आज इसी से शुरू करने जा रहा हूं मैं आज का अपना ये शो जिसका नाम है लेजेंड्स, जिसके जरिए हम लेजेंड्स की जिंदगी जीने की महज कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिया उसे पूरी तरह से छुपाना तो मुश्किल है पर कोशिश जारी है मेरे दोस्त। तो चलिए पहेलियां बुझाना मैं बंद करता हूं और आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। उनके लिए मैंने एक लेटर चुना है एस, हालांकि उनका नाम वी से शुरू होता है। अब आप कहेंगे तुम तो पहेलियां भी बुझा रहे हो यार, तो चलिए सीधे नाम बता देता हूं उनका मैं। आज के हमारे लेजेंड हैं विनोद खन्ना साहब, जिनकी जिंदगी के सफ़े हम पलटने वाले हैं आज। पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है स्टारडम सैचुरेशन स्पिरिचुअलिटी। स्टारडम के सबसे ऊंचे स्टेप पर था ये स्टार। एक दिन मुंबई के नटराज स्टूडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक से भरी दुनिया को छोड़कर मन की शांति की ओर कदम बढ़ाने का फैसला पूरी दुनिया को सुना दिया। आचार्य रजनीश के आश्रम में जाकर खुद को तलाशने लगे, शायद वो उनकी सफलता का सैचुरेशन पॉइंट था। वो उससे दूर जाकर खुद में डूबना चाहते थे। सेल्फ इंटेलिजेंस के आरोप लगाए दुनिया ने उन पर, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन हैज टू ट्रेवल अलोन, कम अलोन गो अलोन। परिवार नाराज हुआ, लेकिन अपनी सोल को खोजने और अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये टफ डिसीजन लिया। वेल, विनोद खन्ना साहब की जिंदगी के कई और पन्ने भी हैं, हार्ट एंड सोल डालकर हमें इनकी कहानी को समझना होगा, क्योंकि सफलता का स्वाद चखकर उसे छोड़कर लौट जाना इतना आसान कहां होता है और हर किसी के बस की बात भी कहां है। फिलहाल मैं आपको यहां छोड़कर जा रहा हूं एक गाने के साथ, लौटूंगा मैं भी ठीक उसी तरह जिस तरह विनोद खन्ना साहब लौटे एक बार फिर से बॉलीवुड में। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव समर के साथ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
4: वेलकम बैक, ऐसे समर आपके साथ है एंड ऐसे सिंगापुर आप सुन रहे हैं. ऐसे शो नाम है जिसका लेजेंड्स एंड ऑफ कोर्स ये है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आज मेरे साथ दो ऐसे हैं, सन यानी बेटा एंड सन यानी सूरज. कहानी है एक पिता की जो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्म्स में एक्टिंग करे. अपने बेटे के इस डिसीजन से इतने खफा थे कि उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तक तान दी थी. लेकिन तब माँ बचाव में आई और थोड़े से वक्त की गुहार लगाई पिता से. जानते हैं पिता कौन थे? मुंबई के टेक्सटाइल्स, डाइज एंड केमिकल्स के मशहूर बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना. और ये माँ थी कमला खन्ना और बेटा था विनोद खन्ना. बीच बचाव का नतीजा देखिए. उनका सन SON SUN यानी सूरज की तरह आकाश के माथे पर चमक उठा. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि ये दौर था भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का. सीमाओं के आर पार इंसानी लेन देन चल रहा था. इसी बीच 1946 में अक्टूबर के महीने में पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना साहब. उनकी फैमिली इंडिया आ गई, घर पेशावर में ही रह गया. सेकेंड क्लास तक विनोद खन्ना ने अपनी शिक्षा मुंबई से की, फिर इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई. 3S फिर नुमाया है मेरे मन की सिल्वर स्क्रीन पर, स्कूल, स्पोर्ट्स, स्टेज एंड ऑफ कोर्स सिल्वर स्क्रीन. दिल्ली पब्लिक स्कूल में विनोद खन्ना पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे, खास करके फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस में. लेकिन तभी इनके एक टीचर ने स्कूल प्ले में पहली बार स्टेज से उनका तारुफ करवाया और ये सफर सिल्वर स्क्रीन तक जा पहुंचा. विनोद खन्ना साहब के फिल्मी नामे पर हम बाद में नजर डालेंगे, लेकिन मुझे एक और बात बतानी थी. विनोद खन्ना साहब ने 2 शादियां की. पहली पत्नी पारसी थी, गीतांजलि तालियार खान उनका नाम था. इनके इनसे 2 बच्चे हुए, अक्षय एंड राहुल. मगर विनोद के ओशो के आश्रम जाने के बाद इन दोनों का तलाक हुआ, मतलब विनोद और गीतांजलि का. विनोद जब लौटे तो उन्हें मिली कविता दफ्तरी. तो चलिए विनोद जी की कहानी को कविता के इसी सिरे से पकड़ेंगे. पहले सुनिए आप ये बेहतरीन नगमा और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन जहां पर समर आपसे आज बात कर रहा है एस की यानी सुपरस्टार विनोद खन्ना की. शो है लेजेंड्स, सो स्टे ट्यून्ड.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: विनोद खन्ना साहब की जिंदगी को जी रहे हैं आप सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ समर, और समर आज अपने नाम के पहले अल्फाबेट एस के साथ विनोद खन्ना की जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। एस से सिंपल, स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेट अवे, सबमर्ज्ड। हाँ, यही है विनोद खन्ना साहब। कैसे, अभी बताता हूँ। कविता से विनोद की पहली मुलाकात का किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। कविता उस वक्त 28 साल की थी जब उन्हें विनोद खन्ना से मोहब्बत हुई थी। एक पार्टी में दोनों मिले। कविता को विनोद बहुत सिंपल लगे। कविता थी बहुत लिटरेट, बहुत पढ़ी लिखी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ी थी। एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से थी वो। कविता विनोद खन्ना को यूं ज्यादा नहीं जानती थी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, आन मिलो सजना ही देखी थी, लेकिन इसे ही डेस्टिनी कहते ना। उनको तो मिलना था। कविता इससे पहले किसी पार्टी में गई नहीं थी और न ही उसके बाद गई, लेकिन विनोद उनसे इंप्रेस्ड हो गए थे और विनोद ने उनसे फोन पर बात करना शुरू किया। वो उन्हें दिन में कम से कम 5 बार कॉल किया करते थे, लेकिन वो कहीं भी बाहर उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। विनोद खन्ना ने कई बार कहा कि चलो कहीं घूम आते हैं, डेट पर चलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। फिर एक दिन तय हुआ कि वो रोज सवेरे जॉगिंग पर मिलेंगे, और शादी तक वो हर रोज जॉगिंग करते थे एक दूसरे के साथ। और फिर एक दिन बैडमिंटन खेलकर विनोद खन्ना लौटे। कविता से किसी बेहद इंटेंस मोमेंट में शादी के लिए पूछ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कविता और वो बस यूं ही बातें करते रहें। कविता की अपनी जिंदगी थी, साथ ही विनोद की पहली शादी से 2 बच्चे भी थे, अक्षय एंड राहुल खन्ना। कविता विनोद से काफी अटैच फील कर रही थी। उन्होंने सारी दुनिया का विरोध करके अपने से उम्र में बड़े और 2 बच्चों के पिता विनोद का हाथ थाम लिया। उन्होंने विनोद को हमेशा इमोशनली और मेंटली एंथुसियास्ट माना। उनके दोनों बच्चों को दोस्त की तरह प्यार दिया। उन्होंने कोई जॉब नहीं किया। विनोद खन्ना साहब ने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब वो उनके इलेक्शन कैंपेन प्लान करती थी, क्योंकि विनोद खन्ना साहब काफी स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेट अवे हैं। वहीं कविता बहुत ही सधी हुई, एनालिटिक और क्लियर है। हाँ, कविता को एक शिकायत है कि विनोद साहब अपनी मेडिटेशन में ज्यादा सबमर्ज यानी डूबे हुए रहते हैं, और सबसे बड़ी बात विनोद इसे स्वीकारते हैं कि उनके लिए इनर पीस काफी जरूरी है। बहरहाल, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। करिए इंतजार। क्या सोच रहे हैं अगले एस कौन से होंगे? एस से सस्पेंस बना रहने दीजिए जनाब। लौट कर आता हूँ। मैं हूँ समर आपके साथ सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं विनोद खन्ना की कहानी समर की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लिटिल डार्लिंग द स्माइल रिटर्निंग टू द फेसेस। लिटिल डार्लिंग इट सीम्स लाइक इयर्स सिंस इट्स बीन हियर। हियर कम्स द सन। हियर कम्स द सन एंड आई से इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं मैं मशहूर बैंड बीटल्स का ये गाना यूं बोलकर क्यों सुना रहा हूं आपको। वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। दरअसल विनोद खन्ना साहब के कॉलेज फ्रेंड इस बैंड को बहुत फॉलो करते थे, बीटल्स को। इनका भी एक अपना ग्रुप था। वैसे बीटल्स का कम टुगेदर मुझे भी बहुत पसंद है, आप में से भी बहुत लोगों को होगा यकीनन। वेल अभी मेरे पास ऐसे दो नाम है, एक तो समर मैं और दूसरा है स्वामी विनोद भारती उर्फ सेक्सी सन्यासी। या इसी नाम से विनोद खन्ना साहब को पुकारा जाता था। अब वो थे ही इतने हैंडसम, करियर की बुलंदी पर थे। अपने टाइम के अभिनेताओं के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती थे, बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन। तब वो संन्यास लेकर चले गए अमेरिका में ओशो कम्यून रजनीशपुरम में, जहां वो आश्रम में ओशो के बर्तन धोते और बागवानी करते थे। हालांकि इससे पहले ही वो ओशो के शिष्य बन चुके थे। वो अक्सर अपनी फिल्म्स की शूटिंग पुणे में रखवाया करते थे। वहां आश्रम में बहुत सारा वक्त मेडिटेशन में बिताया करते थे। इनफैक्ट हर वीकेंड वो पुणे जाया करते थे। विनोद बहुत देर तक शूटिंग पर भी सन्यासी का मैरून चोगा पहने रहते थे, एक माला भी पहने रहते थे, और काफी देर बाद वो शूटिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे। फिर उन्होंने दीक्षा भी ले ली। उन्होंने अपने कीमती कपड़े, जूते, लग्जरी की सभी चीजें लोगों में बांट दी, विरक्त हो गए और आश्रम में रहने लगे। इधर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को यकीन नहीं हुआ, किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, अफवाह समझा। मगर जब विनोद साहब ने अपने साइनिंग अमाउंट लौटा दिए, तब सबको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। जब ओशो को किसी वजह से अपना पुणे आश्रम बंद करना पड़ा, तो ओशो के साथ वो भी अमेरिका चले गए। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। हालांकि उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी लोग आए और विनोद ने बिना किसी भाव के सीधे शब्दों में संन्यास की घोषणा कर दी। उनकी पत्नी गीतांजलि और दोनों बेटे वहां मौजूद थे, मानो कोई मौन स्वीकृति दे रहे हों। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। इसके कुछ ही वक्त बाद उनका अपनी वाइफ से तलाक हो गया। बहरहाल ये तो उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन इनकी फिल्मी दुनिया को जिएंगे। मैं फिर से अगले एस के साथ लौट रहा हूँ। आप इस एस के साथ एक एस और निभाइए, यानी स्टे कनेक्टेड विद सिंगापुर'स नंबर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे वो बदलते रहे। कुछ ऐसी शख्सियत को आज हम जी रहे हैं जिन्होंने कितना कुछ बदला, बदलते ही रहे। समर के साथ आप सुन रहे हैं शो लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और आज हमारे इस शो में हमारे साथ हैं विनोद खन्ना साहब, और उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को हम कोशिश कर रहे हैं एक एक करके आपके सामने लाने की। और इसके लिए हमने अपने ही अंदाज में एक लेटर लिया है एस। यूं तो एस से सुपरस्टार भी होता है, और वो तो होते भी सुपरस्टार, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स उनके समकक्ष अभिनेता अमिताभ बच्चन से ज्यादा उस वक्त उन्हें पसंद करते थे। वो एक्सट्रीमली गुड लुक्स वाली पर्सनैलिटी थे, लड़कियां उन पर फिदा थी, और एक्टिंग तो बेमिसाल थी उनकी, मगर वो चले गए। खैर, अभी हम बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। तो हुआ यूं कि उनके जीवन में एक एस और आया। हाँ, ये थे सुनील दत्त साहब, जो अपने भाई को यानी सोम दत्त साहब को लॉन्च करने के लिए फिल्म बना रहे थे। विनोद खन्ना साहब को उन्होंने देखा और फिल्म में बतौर खलनायक एक रोल दे दिया, साइन कर लिया गया उन्हें। अब देखिए किस्मत की पलटी, इस मन का मीत नाम की फिल्म का हीरो तो चला नहीं, लेकिन विनोद खन्ना साहब की गाड़ी फर्राटा दौड़ निकली। अब संयोग की बात देखिए, जिस फिल्म ने उनके अंदर मोशन पिक्चर्स के प्रति रुचि जगाई थी वो भी ऐसे ही थी। उसका नाम था 16 साल। ये उन्होंने तब देखी जब वो नासिक के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्होंने वहाँ एक और फिल्म देखी थी मुगल-ए-आज़म, बस वहीं से उनके अंदर फिल्म्स में काम करने की चिंगारी जाग उठी थी। शुरुआत में उन्होंने कई फिल्म्स की जिनमें विलेन का रोल उन्हें मिला। पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान, मगर उनके लुक्स उनके खलनायक वाले किरदार से मैचअप नहीं करते थे। चुनाचे वो नायक की तरह स्क्रीन पर उभर कर आए, और फिल्म थी हम तुम और वो, और इसके ठीक बाद आई फिल्म मेरे अपने। हालांकि मेरे अपने एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन विनोद साहब को इसमें काफी पसंद किया गया। उनके इस फिल्मी सफर पर हम रोशनी डालते ही रहेंगे। फिलहाल आपको मैं थमा रहा हूँ एक बेहद खूबसूरत गीत की डोरी, जिसे थामे हुए आप बस बहते रहिए। गीत के किनारे पर मैं आपको खींच लूंगा विनोद खन्ना साहब की कहानी में, कहीं जाने नहीं दूंगा। बंधे रहिए और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और ये जो शो है जिसे आप सुन रहे हैं उसका नाम है लेजेंड्स। मैं हूं समर आपके साथ, और आज मेरे साथ एक बेहद स्टनिंग पर्सनैलिटी विनोद खन्ना साहब हैं। हाँ, तो हम उनकी फिल्म्स की बात कर रहे थे। क्या आपने कभी कोई हैंडसम डाकू को इमेजिन किया है? अगर नहीं तो विनोद खन्ना साहब को ले लीजिए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक बड़ा सा काला तिलक माथे पर धोती कुर्ता पहने हुए सुपरस्टार धर्मेंद्र को टक्कर देता हुआ बेहद खूबसूरत डाकू। क्या आप जानते हैं कि 40s के अभिनेता ईश्वर लाल के बाद विनोद खन्ना साहब ही थे जो खलनायक से नायक बने। उनको पहचाना गुलजार साहब ने। मेरे अपने के अलावा उन्हें गुलजार साहब ने अचानक में हीरो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर करने वाले एक नेवी ऑफिसर का रोल किया। यू गेस्ड इट राइट, ये एक मशहूर कहानी पर आधारित फिल्म थी, और इसी कहानी का भी रीमेक बना था ना लास्ट ईयर, रुस्तम, अभिनेता अक्षय कुमार थे जिसके। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफ बीट रोल और रिस्की रोल भी किए उस जमाने के हिसाब से, क्योंकि फिल्मों का एक ट्रेंड है अगर आप हटकर कोई भूमिका निभाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका चलना। अब जब मैं उनकी हटके की हुई फिल्मों की बात करूंगा तो अरुणा विकास की लो बजट फिल्म शक में मर्डर सस्पेक्ट का किरदार उन्होंने जो निभाया था उसे कोई नहीं भूल सकता। दरअसल विनोद खन्ना ने कभी भी किसी भी काम से परहेज नहीं किया, अपने आप को किसी टाइप्ड किरदार में बांधा ही नहीं। यही वजह है कि जब वो मल्टी स्टारर फिल्म भी करते थे ना तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते थे। 1968 से 1973 तक उन्होंने 32 फिल्म्स में काम किया, और इनमें से 12 में सपोर्टिंग रोल या नेगेटिव रोल में उन्होंने काम किया, 12 एज अ सोलो लीड हीरो के तौर पर काम किया, और 8 में मल्टी स्टार कास्ट के साथ काम किया। फिल्म कैद में उन्होंने पहली बार रोमांटिक हीरो का रोल किया। वेल, हीरोइंस के साथ तो सबकी केमिस्ट्री होती है, लेकिन बच्चन साहब के साथ हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर की, और सबकी सब सुपरहिट फिल्म्स। अकेले अभिनेता थे विनोद खन्ना जो अमिताभ बच्चन की बॉक्स ऑफिस पर सत्ता पलटने का जज्बा रखते थे। इधर राज खोसला साहब भी विनोद खन्ना को काफी पसंद करने लगे थे। 5 फिल्म्स की उन्होंने उनके साथ, मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, प्रेम कहानी, नहले पे दहला और मैं तुलसी तेरे आंगन की। विनोद खन्ना साहब की इनकार, कुर्बानी, हत्यारा, ये कमाल की फिल्में थी, बहुत जबरदस्त हिट रही थी। सफलता उनके लिए दरवाजे खोले उनका इंतजार कर रही थी, जैसे मैं करता हूँ आपका दोनों बाहें फैलाकर। चलिए एक बेहतरीन नगमा सुनकर आइए, मैं यही हूँ सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यूं ही दोनों बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज आप सुन रहे हैं विनोद खन्ना साहब की कहानी समर की जुबानी।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a musty partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: देर तक हाथ हिलाती रही शाख फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने को। हेलो जी एंड वेलकम बैक। समर कर रहा है एक बार फिर से आपका स्वागत स्वागत और स्वागत आपके पसंदीदा शो लेजेंड्स में। ये रेडियो मस्ती सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन। वैसे अलविदा तो विनोद खन्ना साहब ने भी कहा था, शायद उनका ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन ही था कि वो लौट आए। हालांकि इस बीच उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। वो थी उनकी वाइफ, तलाक हो चुका था, मगर बिखरे हुए अपने आशियाने को सजाने के बजाय उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पाने की कोशिश की। वो फिर से अपने काम में जुट गए और पूरा इंसाफ किया अपने काम के साथ। जी हाँ, डिंपल कपाड़िया के साथ उन्होंने कमबैक मूवी की इंसाफ। ये फिल्म सुपरहिट रही। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी विनोद कई दफा ओशो की तरफ मुड़े, एक महीना गायब हो गए, लेकिन फिर वो लौट आए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। उसके बाद फिर उनका सितारा चमका, उन्होंने कई हिट फिल्म्स दी और फिर वो लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, कौन भूल सकता है। सफेद कुर्ता पायजामा में विनोद खन्ना क्या खूब दिख रहे थे। कैसा बारिश की फुहारों की तरह भिगोने वाला गाना है ना ये। उनकी हिट फिल्म्स रही सत्यमेव जयते, फैसला, महादेव, आखिरी अदालत और गुलजार साहब की लेकिन। इसके अलावा भी उन्होंने कई स्टार्स वाली फिल्म्स की, खून का कर्ज, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, एक था राजा एक थी रानी, क्रांति, ये भी सब हिट रही। उन्होंने उस वक्त के सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कमल हासन की फिल्म नायकन का रीमेक दयावान सफल रही थी, लेकिन इस सितारे की चमक कुछ फीकी हो गई। इस बीच कई छिटपुट रोल उन्होंने किए। सल्लू भाई के पिता की भूमिका में विनोद खन्ना नजर आए वांटेड में, फिर दबंग और उसकी सीक्वल में, और उस चरित्र को भी उन्होंने बखूबी निभाया। मगर लौट कर आने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली थी। वो मीडिया से दूर रहते थे, उनका इंटरव्यू कर पाना भी बेहद मुश्किल होता था। अभी मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर से लौट कर आता हूँ दो एस के साथ, एक स्टोरी दूसरा सीरियल, कहीं जाएगा नहीं, स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: दो लफ्जों की ये सारी कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों स्टोरी एंड सीरियल के साथ एक बार फिर लौट आया है आपका एक और एस समर, एक और एस के साथ, शो के साथ जिसका नाम है लेजेंड्स। एक और एस सिंगापुर को सुनाने के लिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये कहानी। मैं हूं समर, ये स्टोरी है विनोद खन्ना साहब की। कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए इस कहानी में, लेकिन स्टोरी चलती रही। अच्छा, सीरियल से याद आया कि उन्होंने एक डेली सोप में भी काम किया था, नाम था मेरे अपने। इसके साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप का भी एक सीरियल में किरदार निभाया था। हाँ, एक और बात याद आती है, उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में भी रोल प्ले किया। वेल, जब विनोद खन्ना फिल्मों में वापस लौटे तो सबसे ज्यादा खलबली मची अमिताभ बच्चन कैंप में। बच्चन साहब पूरी तरह से नंबर वन पर थे। मनमोहन देसाई कहते हैं कि उस वक्त विनोद में एक खास स्पार्क था, वो बस अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। उस वक्त के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निजाम कहते हैं कि विनोद की फिल्म इंसाफ और सत्यमेव जयते ने 80% कॉस्टिंग पहले हफ्ते में ही निकाल ली थी। सलीम खान, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स लिखा करते थे, बोलते हैं कि विनोद की खासियत ये थी कि जब वो गए तब वो नंबर टू की पोजीशन पर थे और जब लौटे तब भी नंबर टू पर थे। महेश भट्ट साहब कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ थी जिसने उनके प्रति लोगों का इंटरेस्ट जगाया। खैर, जो भी हो, विनोद खन्ना साहब खुद कहते हैं कि जब वो लौटे उस वक्त इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और उनके फ्यूनरल के साथ ही राजीव देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन था राजीव गांधी का और इसने उन्हें बहुत हौसला दिया और उनके कमबैक को सक्सेसफुल बनाया। देखिए कहां कहां से हिम्मत और इंस्पिरेशन मिलती है। वेल, अभी हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और वो है बहुत कठिन। समझ गए आप, 3 बेस्ट सॉन्ग्स आपको सुनाने हैं। एनीवे, मैं मुश्किल काम से घबराता नहीं हूँ, मैं लौट कर आऊंगा, एक से बढ़कर एक गाना चुन कर लाऊंगा। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां आज हम जी रहे हैं विनोद खन्ना साहब को, उनकी फिल्मों को, उनकी जिंदगी को।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
4: चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, प्यार प्यार प्यार. वेलकम बैक. क्यों, क्या सोच रहे हैं आप? आपसे तो हमें बहुत सारा प्यार यूं भी चाहिए. मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. और आज हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की. आज के हमारे लेजेंड वही हैं. और ये जो वक्त है बड़ा ही मुश्किल होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था. 3 बेस्ट सॉन्ग्स चुनने हमें विनोद खन्ना साहब के, तो चलिए काम पर लग जाते हैं. तो ये जो गाना मैंने भी गाया ना, यही था मेरा आज का पहला गाना, प्यार प्यार प्यार प्यार. फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, सिंगर किशोर दा. और कौन, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग बजाओ ताली. मैंने मंत्र भूखा है और दूसरा गाना निकाला है प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी. यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें. ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. जानते हैं क्यों? ऑफ कोर्स किशोर दा एंड इतनी शुद्ध हिंदी. और हाँ, देखने में भी बहुत मस्त है ये गाना, मुझे बेहद पसंद है सच में. आप भी सुनिएगा इसे. और तीसरा गाना है फिर से अपने किशोर दा का, और यकीन मानिए फिल्म का नाम भी है मेरे अपने. बेहद खूबसूरत ट्रैक, बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही सैड भी, लेकिन फिर भी उदास लम्हों में सुकून सा देता हुआ. आई लव इट्स पिक्चराइजेशन एज वेल. घूमते हुए साइकिल के पहिए के बीच से झांकते विनोद साहब, जैसे वक्त का पहिया घूमता हो. हाँ, वक्त अब ये इशारा कर रहा है कि आप ये गाना सुन लीजिए, मैं इसके बाहर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि अब जाने का वक्त भी हो चला है. आप हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अपने समर के साथ, जहाँ चल रही है विनोद खन्ना साहब की बात.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप हैं समर के साथ। और आखिर में जो मैं आज अपने शो पर एस लेकर आया हूं, उससे शब्द बनता है सदगुरु। आप सोचेंगे शो का नाम है लेजेंड्स और समर अध्यात्म की बात कर रहा है। जब आया था तब भी ओशो की टीचिंग लेकर आया था, जाते जाते भी ऐसी कुछ बात कर रहा है। भाई क्या कीजिएगा, ये है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और आपका पसंदीदा शो है ये लेजेंड्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज अच्छी अच्छी बातें की जाएं। वेल फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज विनोद खन्ना साहब की जिंदगी को जिया, और जब मैं अध्यात्म की बात करता हूं तो हाँ ये सच है, क्योंकि आज हम जिस शख्स को जी रहे हैं ना, उनकी यही फिलॉसफी रही है, अपनी जिंदगी को किसी गुरु के प्रति समर्पित कर देना। कितना कुछ खोया लेकिन फिर भी अपने लिए जिया। इनके बेटे अक्षय खन्ना, जो बॉलीवुड एक्टर भी हैं, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगा जब पापा विनोद उनको छोड़कर ओशो से जुड़ गए थे, उस वक्त वो महज 5 साल के थे, तो अक्षय कहते हैं कि हर किसी को अपना जीवन अपनी तरह जीने का अधिकार है, और उनके पिता ने यही किया। उन्होंने अपनी खुशी को चुना। इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैनॉट मेक पीपल हैप्पी अराउंड यू। वेल बात तो सही है, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं विनोद खन्ना साहब के बारे में। विनोद साहब की स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट को अलग अलग तरह से लिया जाता है, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू में उन्हें बुलाकर कहा गया कि वी आर प्राउड ऑफ यू, तो वो बोले आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस इज द स्पिरिट जिसने उन्हें सफलता असफलता और सफलता के बीच जिलाए रखा। और चलते चलते उन्हीं के अंदाज में उन्हीं का पसंदीदा कबीर दास जी का दोहा आपको सुना देता हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न दोष। आप बस यूं ही सुनते रहिएगा सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अभी जाने का वक्त है, दीजिए इजाजत, एक और लेजेंड से मुखातिब होंगे, उसके बेहतरीन नगमे आपको सुनाएंगे, लेकिन तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। नमस्कार, बाय बाय।

0: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
1: एंड सो वीकेंड वाज एन ऐप
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
1: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live pe. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय
1: वो आ गया देखो वो आ गया
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: पे पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत, ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh Mera.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

birthday to us. Happy birthday to us. Happy, happy, la la, birthday to us. Hello, hello, everyone, and welcome, welcome, welcome. भाई आज की शाम खास है, आज का दिन खास है, और सच बताओ इस दिन की palpitations भी काफी ही खास है. क्यों है वो सब बताऊंगी, ऑफ कोर्स बताऊंगी. मैं हूँ आपकी अंशरा, यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ जुड़ चुकी है. एंड ऑफ कोर्स आज का ये शो जो है ये तो खास होना ही था, आफ्टर ऑल हमारा वाला बर्थडे है भाई. सबसे पहले तो हम सभी को ही साथ साथ में बधाइयां. 17 इयर्स ऑफ मस्ती एंड 10 इयर्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7 भाई, बात तो है बॉस, बहुत ही बड़ी बात है. एंड यस वी आर हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, प्राउड भी है, इमोशनल भी है, थोड़ा वैसा भी है कि अरे यार इतने साल कैसे हो गए. वो वाला फीलिंग होता है ना, वो भी है. बट मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर थैंकफुल बिकॉज 17 इयर्स सिर्फ कैलेंडर के पेजेस पलटने से नहीं बनते, 10 इयर्स 24/7 सिर्फ ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी और प्लेलिस्ट से नहीं चलते, हम सब मिलके इसको चलाते हैं. आपने ट्यून इन किया, हमारे साथ हंसे, गाने मांगे, मैसेजेस भेजे, कॉन्टेस्ट खेले, कभी हमारी टांग खींची, हमने आपकी टांग खींची, कभी तारीफ की, कभी हमें हक से डांटा. सबसे इंपॉर्टेंट, इतने सालों तक हमें इतना प्यार दिया, तो सेलिब्रेशन सिर्फ हमारी कैसे हो सकती है ना. इसीलिए हमने सोचा कि आज हम सब भी चलिए यहीं पे चले आते हैं एज अ टीम टुगेदर, नॉट ओनली टू सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन, बट बिकॉज आज यहाँ आकर इस माइक के सामने बैठकर अपने दिल की थोड़ी थोड़ी बात करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट था. सो समझ लीजिए मस्ती की ऑन एयर एनिवर्सरी पार्टी ऑफिशियली अभी शुरू होती है. आज वी द जॉक्स वी आर गोइंग टू बी राइट हियर, आते जाते रहेंगे अपनी कहानियां, अपनी यादें, अपने दिल की बातें लेकर. और हाँ, इमोशनल होके सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे बॉस, मस्त एकदम पार्टी टाइप प्लेलिस्ट यहाँ पे बनती हुई जाएंगी, गाने बजेंगे, माहौल बनेगा, प्रॉपर मस्ती वाला सेलिब्रेशन होगा. एंड वेट वेट वेट वेट वेट एक मिनट, मुझे यहाँ से दिख रही है नुपुरवा. ठीक है रुको, मैं उसको पकड़ के लाती हूँ, आप कहीं मत जाइए. ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट हमारा हैप्पी वाला बर्थडे टुगेदर ऑन रेडियो मस्ती 24/7. हैप्पी बर्थडे टू अस.

आपको पता है हमारे रिश्ते को, हमारे रिलेशनशिप को 8 साल हो चुके हैं, आपने किसी को बताया नहीं? अरे यार, ऐसे धोखे नहीं चलेंगे। आपकी और हमारी स्टोरी ना कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं है। रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ, एंड डेफिनेटली मैं जिस रिश्ते की बात कर रही हूँ वो पिछले 8 सालों से रेडियो के इस पार और उस पार रहा है। मतलब हजारों लोग ऐसे हैं जिनसे हम पर्सनली नहीं मिले हैं, बट हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है। कभी आप हमारे फेसबुक पे रेगुलर DM करते हैं, कभी आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, कभी आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड कॉल कर देते हैं। अपनी कितनी बातचीत हो जाती है ना। हाँ, सो ये रिश्ता रातों रात नहीं बना है, सालों लगे हैं मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप मुझे यानी आरजे अनुपम को सुन रहे हैं, और ये रिश्ता मुझसे भी ज्यादा पुराना है। हाँ जी, मस्ती मीडिया को हो चुके हैं पूरे 17 साल, एंड अगर 24/7 लाइव स्टेशन की बात करूं तो इसे हो चुके हैं 10 साल। और आपका ये प्यार आय हाय बढ़ता ही गया। एंड यू नो व्हाट, जब मैं शो से जाते जाते साइन ऑफ करते करते ये भूल कर जाती हूँ ना कि चलिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ये लाइन लिटरली लोगों ने ना मिमिक करके व्हाट्सएप के ऑडियो मैसेजेस के थ्रू हमें कई बार भेजे कि नुपुर यार क्या बोलती हूँ, मजा आ जाता है। तो बस ऐसे मैसेजेस ही हमारा दिन बना देते हैं, मतलब लिटरली। हाँ, हम जो हैं आपकी वजह से हैं यार, और हमें कुछ नहीं बदला है, बस हमारे नाम को छोड़कर। हाँ, ऐप का नेम हो गया मस्ती मीडिया 24/7, दैट्स इट, बाकी सब कुछ पहले जैसा। सो थैंक यू सो मच हमारे एनिवर्सरी का और हर एक उस मोमेंट का हिस्सा बनने के लिए जिसमें आपका प्यार रहा है। मैं आरजे अनुपम आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

दिस इज मी मुग्धान। रेडियो मस्ती की एनिवर्सरी पर सभी को बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑनेस्टली मस्ती के साथ मेरी जर्नी इतनी पुरानी है ना कि मुझे एग्जैक्ट साल या डेट तो भी याद भी नहीं है। मैंने कब शुरू किया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, है ना। बस इतना याद है कि एक वक्त था जब मस्ती वॉज जस्ट अ शो फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड, एंड स्लोली एंड स्टेडिली वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। अपना सा लगता है, पहले कभी कभी शोज, फिर रेगुलर लिंक्स, मतलब कभी कभी थे फिर रेगुलर हो गए, उसके बाद स्क्रिप्ट्स एंड फेस्टिवल्स एंड स्पेशल एपिसोड्स। पता ही नहीं चला कि इतने साल कब निकल गए। ऑल्दो हम अभी भी ऑल्टरनेट मिलते हैं पर लगता ही नहीं असल, अभी तो आए थे कल, है ना। ये तो स्पेशल है। कुछ थोड़ी ब्लर हो चुकी है, बाकी सब तो बहुत क्लियर है, बहुत सी मेमोरीज है, एब्सोल्युटली क्लियर। एक फीलिंग जो है ना वो कभी ब्लर नहीं होती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। माइक के सामने बैठ के लोगों से बात करना, आपको लगता है मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मैं सबको देख सकती हूँ। एंड फेवरेट डे चूज करने को कहा जाए, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है सच में। शायद मेरे फेवरेट मोमेंट्स वो रहे हैं जो जब किसी लिसनर ने मैसेज करके कहा है कि मेरी आवाज ने उनका मूड बेटर कर दिया, या उनको किसी लिंक की कोई लाइन याद रह गई, कोई गाना ऐसा प्ले हुआ जो उनको लगा कि वाह मुझे तो यही सुना था इस समय, वो सडनली प्ले हो गया। कभी कभी ना बिना मिले भी किसी के दिन का आप हिस्सा बन जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि रेडियो सिर्फ बोलना नहीं होता है, इट्स लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ, हिस्सा बन गया हम किसी का, है ना। तो मस्ती के साथ मेरी जर्नी अगर मैं कहूँ तो डेट्स में नहीं है, वो यादों में है, और शायद इसीलिए वो इतनी स्पेशल है। मस्ती करते रहो मस्ती हैंग आउट के साथ।

मुबारक हो, मुबारक हो। जी हाँ बिल्कुल, 10 साल, 10 साल ऑफ मस्ती 24/7। आई कैन नॉट बिलीव इट, दिस इज अमेजिंग। जी बिल्कुल, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी सारी टीम को ही नहीं, लेकिन आप लोगों को भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैं तो कहती हूँ, जब 24/7 का जन्म हुआ ना, तो हम सभी के लिए एक नई जिंदगी थी। अब मैं क्या ही बताऊं कि भाई 1st of October 2016, एक ऐसा दिन जो शायद मैं अपने इस जन्म में तो नहीं भूल पाऊंगी, और उससे पहले का एक हफ्ता भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि जिस तरह की मल्टीटास्किंग, जिस तरह का दिमाग, जिस तरह का शरीर, और जिस तरह का, मतलब मैंने 10 उंगलियां तो क्या, मैंने शायद 50 उंगलियां और 12 हाथ और पता नहीं क्या क्या करके चलाए होंगे अपनी टीम के साथ। दिमाग जो कि 24/7 चल रहा था, आई टेल यू दैट वन वीक वॉज लाइक द अल्टीमेट। स्टूडियो का सेटअप हो रहा था, साथ ही साथ में इंटरनेट के इश्यूज आ रहे थे, साथ ही साथ में क्लाइंट्स को आगे अपने लेके जाना था, कस्टमर्स अपने जो ऑफकोर्स जो ऑडियंस है उनको बोलना था कि डाउनलोड करो, उसके अलावा प्रोग्रामिंग जो कि 3 घंटे से 24 घंटे की हो रही थी वो पूरी प्लानिंग करनी थी, पेपर वर्क चल रहा था, स्टूडियो का सेटअप, पूरा इक्विपमेंट चल रहा था, और साथ ही साथ में एक ऐसी कहानी चल रही थी जहाँ पर हमारे पार्टनर जो थे उन्होंने सोच लिया कि वो हमारा साथ आखिरी मोमेंट पर छोड़ देंगे। इतना कुछ होते हुए भी आई एम जस्ट थैंकफुल, ये वाला हफ्ता कभी नहीं भूलूंगी और ये वाला दिन कभी नहीं भूलूंगी। आई टेल यू, एक ऐसी मेमोरी हो तो आपके साथ शेयर भी करूं, इतनी सारी मेमोरीज हैं कि समझ में नहीं आ रहा। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जैसा कि हम कहते थे उस टाइम पर और आज कहते हैं मस्ती मीडिया 24/7, आपके बिना ये दिन हम कभी नहीं देख सकते थे। सो थैंक यू गाइज, एंड थैंक यू गाइज, दिस इज रेणुका। ऑफकोर्स बड़ी सारी हैट्स पहनती हूँ मैं, एक तरफ फाउंडर और दूसरी तरफ आपकी रेणुका, ओ माई डार्लिंग। ये दोनों के बीच का जो फासला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग पूरा कर सकते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।

कभी कभी मेरे दिल में आता है ये ख्याल, कैसे बीत गए ये 10 साल, 10 साल बेमिसाल। A very warm hello, आदाब, नमस्कार, केम छे सिंगापुर, सारू छे अखा सिंगापुर, मारू छे। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये है बेशुमार दौलत जो आपने हम पर लौटाई। हमने भी कोशिश की कि हम भी आपको मनोरंजन के रूप में इसे लौटा सकें। मेरा नाम है समर और आज 10 साल का हो गया है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और एक खुश खबर है, इधर आइए, पास आइए, मैं आपको बताता हूँ। रेडियो मस्ती है ना, बालिग होने वाला है, लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए इसके लिए। जी हाँ, 17 साल पहले ये सफर शुरू हुआ, तब बच्चा छोटा था तो हम 3 घंटे के लिए आपसे मिला करते थे। और उसके बाद 2016 से लेकर अब तक हम लगातार 24 घंटे आपके साथ हैं। और अब सिर्फ सिंगापुर में नहीं, अब तो दुनिया भर का वीजा ले लिया है। जी हाँ, इंटरनेट पर हम अवेलेबल हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी हमें सुन सकते हैं। और आप सुनते हैं, आपकी यही तो बात हमें बहुत अंदर तक छू जाती है और इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हम पूरी ईमानदारी से उसे निभाने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए, 10 साल पहले अचानक सिंगापुर की एयरवेव से मस्ती गायब हो गई थी, सन्नाटा छा गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में झन्नाटा हुआ और सिर्फ 3 घंटे नहीं, 24 घंटे के लिए हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए उन दो खनकती हुई आवाजों के साथ जिनके बिना रेडियो मस्ती का नाम अधूरा है, रेणुका और अंतरा। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ा, हम भी उसमें जुड़े और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े, कारवां बनता चला गया और आज ये कारवां कर रहा है अपने पूरे 10 साल। तो बधाई हो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की पूरी टीम को और तमाम लोगों को जिन्होंने कर दिया है ये कमाल। और जिन्होंने अभी तक मस्ती की ऐप डाउनलोड नहीं की है वो गूगल प्ले पर जाएं, ऐप स्टोर पर जाएं और मस्ती मीडिया 24/7 के नाम से हमारी ऐप मिलेगी, उसे डाउनलोड करें। 24 घंटे एंटरटेन रहें, इन्फॉर्मड रहें। क्या कहते हैं जी, हैं जी? तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं समर और थरक थरक के कर रहा हूं थर थर। कभी कभी ऐसा भी होता है। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, एंटरटेनमेंट का पूरा डोज यही मिलेगा आपको।

आखिरी एक बार और मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ भाई, ऐसा है कि मुझसे कहा गया है कि कोई ऐसी एक इंसिडेंट, कोई ऐसा एक टाइम सबके साथ शेयर करो जो आप कभी नहीं भूल सकते। भाई एक हो तो बताऊं, यहाँ तो सौ सौ हैं, पूछिए मत आप। सो हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन वंस अगेन। वेल, मुझे एक दिन ऐसा याद आता है कोविड के टाइम पर, आप जानते हैं जब हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में जुड़ रहे थे और हम लोग बहुत कुछ मेहनत कर रहे थे उस टाइम पर, एजुकेट करने की, एंटरटेन करने की। ये बात है 2020 की, राइट? सो 2020 में जब कोविड हुआ और हम जानते हैं कि सभी डॉर्म्स में हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, हमारे जो ब्रदर्स हैं, वो सारे के सारे किस तरह से फंसे हुए थे और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा और बाहर जाना मना था एंड ऑल दैट हैपेंड, एंड हम लोग स्टूडियो में भी सिर्फ दो ही लोग अलाउड थे, एंड उस टाइम पर जुड़ने की ज़रूरत और ज़्यादा हो रही थी कि कैसे लोगों को खुश रखा जाए और बिल्कुल इन्फोटेन रखा जाए, उनको सारी खबरें दी जाएं कि बाहर चल क्या रहा है। और उस समय जब हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया, वो भी अपना विजुअल प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड मस्ती AVI, ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव, जिसमें कि हम टू वे बातें कर सकते थे, आप तक शोज ला सकते थे, दुनिया भर से किसी के साथ भी जुड़ सकते थे, वो मुझे दिन कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि किस तरह से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे शोज देखे। देखिए टीवी चैनल्स वगैरह पे नए शो बन नहीं पा रहे थे बिकॉज दुनिया भर बिल्कुल ठप हो गया था सब कुछ, लेकिन हम यहाँ पे नए नए शोज आपके लिए रोज रोज ला रहे थे, ना ही सिर्फ ऑन एयर बट ऑल्सो ऑन विजुअल। हमने दोस्त बनाए, दुनिया भर में दोस्त बनाए, और सबसे बड़ी बात है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि मैं कह रही थी, उनके साथ में हमने जितना प्यार बांटा है, बांग्ला अपना प्रोग्राम शुरू करके क्या क्या नहीं किया यार। And I tell you, it is quite a journey. It's a commendable journey. And this could not have been real without you. So thank you, our dear listeners. Thank you to everyone who's tuned in right now. Thank you to each one of you who has supported us, not only by tuning in, but also by just your good wishes. Hai na? Just with a smile, just by saying, keep it up, Team Masti. बस यही कहते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें, आपको खुश करते रहें और खुद भी खुश रहें।

सभी लोग अपनी अपनी जर्नियों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ. आई डोंट फील ओल्ड, आई फील प्राउड दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मस्ती मीडिया नेटवर्क फॉर सो लॉन्ग. जब ये मस्ती मीडिया नेटवर्क भी नहीं था, ये तो इवॉल्व करके ग्रो होकर अब जाके हम बने हैं. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. आज ये जो है एकदम ऑन एयर बर्थडे पार्टी जो है चल रही है, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एज वेल. वेल यहाँ से चलते हैं FM के दिनों में, बिकॉज आई कैन प्राउडली से दैट ऐसा नहीं है कि रेडियो मस्ती 24/7 जब 10 साल जिसको अब हो गया एज अ 24-hour स्टेशन, या आई was with them from the very beginning, but मैं FM के दिन की बात कर रही हूँ जब मैंने join किया था, और तब हम लोग 96.3 FM पर जाने जाते थे, 5 से 8 आते थे. I remember my very first song जिसके साथ मैंने अपना पहला शो किया था, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजे घंटी यार, मुझे लगा था कि बड़ा सूट करता है मुझ पे ये गाना, and this is the perfect song for me to kind of also the promo with which I got introduced was so unique and funny at the same time. Okay, antara santara juicy gossips, something like that it was, and it stayed with me. Main kaha ki bhai but that is the beauty of radio, it's creative, it stays with you. Audio is so very important and so very creative. But usi ke sath sath jo hai, how can I forget about the transition time bhai. पैल्पिटेशंस की बात कर रही थी ना मैं, यहीं पे वो पैल्पिटेशंस आती है. आप एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एक दिन आपको पता चलता है कि कल ये नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, आपको नहीं पता है, बट स्टिल यू गॉट दैट बिलीफ इन योर सेल्फ दैट ठीक है, अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, आगे जो होगा अच्छा होगा. एंड दैट्स वॉट यूनिवर्स काइंड ऑफ प्लेसेस एवरीथिंग, वो पजल के पीसेस जैसे ना धीरे धीरे करते हुए करते जाते हैं, और वहां से लेकर आज का वो दिन द 1st of October व्हेन वी लॉन्च्ड, छोटा मोटा नहीं, 3 घंटे से सीधा 24 घंटे का रेडियो स्टेशन लाइव. ओके, दैट इज व्हाई वी प्राउडली कॉल आवरसेल्फ द पायनियर्स. दैट आई कैन नॉट टेल यू द फीलिंग एग्जैक्टली, बट ऐसा लगा था कि वाओ, I think I know everything now. But उसी के साथ साथ the transition has also brought so many emotional moments. मेरे को याद है अंकल आंटी जो है, the aged अंकल आंटी, we always talk about, we always will remember them, because मैं और रेणुका गए थे उनके वहाँ पर, और हमने किस तरह से जो है पूरा सेटअप किया, and how much love they have given us till the time they were there जो है, and I think ऊपर से भी वो हमें देखकर यूं ही blessings हमेशा ही बरसाते हो गए. But well, coming out from there to a lot of you people as well, right? हम लोग जब ये WhatsApp पे बातें करते हैं, एक कितना खूबसूरत सा रिश्ता हमारा बन चुका है. कभी कभी कितने इनसिंक हो जाते हैं, टेलीपैथी हो जाती है कि आपने सॉन्ग सोचा, मैंने सॉन्ग सोचा, और हमने एकदम सेम सॉन्ग ऑन एयर प्ले कर दिया, एंड यू गो लाइक ओ माई गॉड, यही तो वो गाना था जो मैं सुनना चाहती थी. बट या इट इज just so magical, and I'm so so very thankful, hai na, is the pehle ke aur aansu aa jaye. I think hamari jo ye gaano ki playlist hai party wali, wo bilkul continue rehni chahiye. Yes, keep those wishes coming in, feel free, ekdam bindaas hokar hame likhiye. Yeah, we are loving every bit of it. Enjoy the on air party of Radio Masti 24/7. Happy birthday to us. मैं कौन, अब भी 10 साल बाद भी बताना पड़ेगा. चलो अंतरा.

दिस इज मी मुग्धान विशिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. वेल पता एनिवर्सरीज आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. और ऑनेस्टली अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ ना तो लगता है कि हमने कितना लंबा सफर तय कर लिया. बाय गॉड वेरी वेरी वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज हैं इसके साथ हमारा जो ये सफर है. मस्ती वॉज जस्ट अ रेडियो पहले है ना, रेडियो और शोज तक बहुत लिमिटेड था. लेकिन आज ओ माई गॉड इतना ग्रो कर चुका है. नाउ यू हैव दिस सीन दिस मस्ती मीटर 24/7 का जो ऐप है हमारा, स्टोर पे आप उसको देख सकते हो. हमारे पास मस्ती AVI है और उसके अलावा बहुत सारे नए नए आइडियाज हैं, फॉर्मैट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो जुड़ते जा रहे हैं. एंड वी आर regularly trying and doing something good, better, best बनने के लिए हमेशा आप कोशिश करते रहते हैं. एंड कभी कभी genuinely लगता है वाह हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ आ गए, कितना कुछ बिल्ड हो चुका है ना. हम आपसे 24/7 जुड़े रह सकते हैं, आप हमें रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, आप हमें बाद में कभी भी सुन सकते हो. और ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें रिकॉर्ड करके बाद में भी सुनता है. वाह दैट्स वेरी स्पेशल. मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी ग्रोथ के बाद भी यू नो, मस्ती का कोर जो है वो सेम है. लोगों से कनेक्ट करना, उनके दिन का हिस्सा बनना, उन्हें म्यूजिक कॉन्वर्सेशंस और एंटरटेनमेंट के थ्रू कंपनी देना, उनसे जुड़े रहना, उनके टच में रहना. सो यस वी रियली हैव कम अ लॉन्ग वे. और ऑनेस्टली अभी भी लगता है जर्नी काफी बाकी है, बट यस वी हैव कम अ लॉन्ग वे. हमारी एनिवर्सरी है ये.

देखो, इंडिया से दूर रहते रहते जब भी घर वाले इस बात को लेकर कंसर्न फील करवाते हैं ना कि तुम घर से दूर रह रही हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, तो मैं सबको बता देती हूँ कि मेरा ऑफिस कैसा है, मेरे कलीग्स कैसे हैं, मेरे लिसनर्स कैसे हैं। मतलब यहाँ हल्की सी छींक आती है रेडियो शो पर और उधर से मैसेज आ जाता है कि जरा ख्याल रखो, थोड़ा आराम शराम कर लो। तो बस यही तो प्यार है जो सालों साल से हमारे साथ चल रहा है। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है मेरी जान। हमारे नेटवर्क को 17 इयर्स हो चुके हैं और 10 इयर्स हो चुके हैं हमारे 24/7 लाइव स्टेशन। एंड आई रिमेम्बर 2 इयर्स बैक जब हम सभी लिसनर्स पार्टी में मिले थे ना, तो ये डिस्कशन बाद में हो रहा

था कि हमने शो में क्या बातचीत करी, क्या कुछ हुआ, लेकिन लोगों को याद था कि नूपुर ने क्या क्या बोला है, उसे क्या क्या खाने में पसंद है। तो हमारे कुछ ऐसे भी लिसनर्स हैं जो कि हैंडमेड स्नैक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो एक्चुअली में मेरे लिए ना वो डब्बा पैक करके लेकर आए थे कि नूपुर ये लो तुम्हारे लिए मठरी, नूपुर ये लो तुम्हारे लिए होम बेक बिस्किट्स, नूपुर ये लो कुकीज, नूपुर ये लो वो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार के लिए शायद मैं रेडियो शो पर ये चीज़ें बोलकर भूल जाती हूँ, लेकिन जब आपसे मिली तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरी पसंद नापसंद को कितना ध्यान से सुनते हैं। हाँ, तब से मैंने शो पर ना थोड़ा सा हेल्दी फ्लेवर बोलना शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि नूपुर ना अब हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा चुकी है। हाँ तो देखो, आपसे मिलना, आपके ऑडियो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब देना हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी गलती से कुछ मिस हो जाए तो बुरा भी लगता है, लेकिन जिस तरह से आपसे मैं मिली हूँ और एक अटैचमेंट और ज़्यादा गहरा हुआ है, और शायद आपको भी उतना ही फील हुआ है, तो ये रिश्ता हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा खास बनाया जा सकता है कि आप ऐसी ही बातें हमसे और शेयर करें कि आपको वो कौन सी बातें हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा पसंद आए। ओके, हमारा नंबर तो आपको याद ही है, 9151893। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ हमारे ऐप का नेम बदला है, दैट इज मस्ती मीडिया नेटवर्क। चलिए, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू यार।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, और अगर आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हैं तो ये सफर और भी ज्यादा मस्ती वाला सुहाना हो जाता है। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सफर में बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारी यादें हमने संजोई, कुछ यादें इतनी यादगार हैं कि जिंदगी के बाद भी याद रहने वाली हैं, और ये आपकी मोहब्बत के बिना हो नहीं सकता था। मुझे याद है कि जब हम एक न्यू ईयर बैश कर रहे थे क्लाकी में, तो सपना जी, उनके हस्बैंड रमेश जी और उनकी बेटी, वो उनका कोई प्रोग्राम था, ऑलरेडी वो कहीं बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद वहां आए सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं शब्द खत्म हो जाते हैं जहां से ये बातें करना शुरू करता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी मोहब्बत को देखकर, उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में बताते हुए। मुझे याद है कविता जी जो सिंगापुर से चली गई थी, एक लिसनर्स मीट थी, उसमें वो इंडिया से वापस आई फ्लाई करके सिर्फ हमसे मिलने के लिए। ये प्यार कहाँ मिलता है मेरे यार। और मुझे ये भी याद आता है कि हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि ऑन एयर गाया मत करो, समर को बोलो गाए नहीं। एक बात बताइए, कोई अपना ही इतने प्यार से, इतने हक से कह सकता है ना? तो ये आपकी मोहब्बत जो है ना, ये हमें हमेशा के लिए बांधे रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मतलब बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं जब मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूँ, आपकी मोहब्बत के बारे में बात करता हूँ। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये जज्बा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव का जो ये परिवार है, आप लोगों से बनता है। इसे बनाए रखिएगा, इसे और बढ़ाइएगा, हैं जी। और जैसे कि मैंने कहा कि रेडियो मस्ती 24/7 लाइव बालिग होने वाला है, अब वोटर लिस्ट में उसको इंडिया में नाम मिले ना मिले, लेकिन लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए, कुछ दिनों में लायक हो जाएगा शादी के। क्या जी, हैं जी, तो फिर क्या बात है, बल्ले बल्ले, फिर मिलेंगे, जश्न और तगड़ा करेंगे। क्या कहती हैं रेणुका जी, उनसे मैं पूछूंगा बाद में, अभी तो फिलहाल ये गाने सुनिए आप।

0: Well, जहां पर अभी तक हंस के और खूब खुशी से हम सभी जॉक्स आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहे हैं अपने सबसे सबसे ज्यादा प्यारे वाले लम्हे जो पिछले 10 सालों में हमने आपके साथ बनाए हैं. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम एंड ऑफ कोर्स रिमाइंड यू of these many years which have been highly emotional and very very close to my heart. So well, इस समय में as the founder and managing director of Masti Media Network आपसे एक बात तो करना चाहूंगी.
1: Happy birthday to you.
0: 10 साल sounds like a milestone, लेकिन मेरे लिए it feels like a 1000 memories. 10 साल पहले आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2016 को रेडियो मस्ती 24/7 went live. पहला रेडियो चैनल जो कि प्राइवेट, जो कि 24 आवर्स, जो कि बॉलीवुड का, साउथ ईस्ट एशिया का, और जो कि फुली डिजिटल. कैन यू बिलीव इट, वी एक्चुअली हैव बीन पायनियर्स. हमें पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है. वी ओनली न्यू वन थिंग, दैट मस्ती हैड टू कंटिन्यू. एंड इट डिड. Changing technology, changing times, a pandemic, challenges, reinventions, incredible highs. And some moments, jab giving up shayad thoda sa easier option tha, kai baar socha tha. Lekin aap rahe hamare saath, hamare listeners, hamare clients, our partners, our artists, our team members, past and present. हर इंसान जिसने विश्वास रखा मस्ती पर, सपोर्ट किया, हमें चैलेंज किया, हमें फोन किया, हमें मैसेज किया, हमारे साथ एडवर्टाइज किया, हमारे साथ आप हंसे, एंड समटाइम्स आपने हमें कंप्लेन भी किया. यू बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, एंड फ्रॉम रेडियो टू मस्ती एवीआई, फ्रॉम इवेंट्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स टू मस्ती मीडिया अकेडमी, और अब ओरिजिनल कॉन्टेंट और प्रोडक्शंस, और अब तो मेरा बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका जो आज ही लॉन्च हुआ है. We have kept evolving. But एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदली वो है the heart of Masti. When I look back today, I feel proud. I feel grateful. And more than anything else, I feel excited about what comes next. क्योंकि 10 साल was never the destination. It was only the beginning. So thank you Singapore, thank you to our listeners around the world, and thank you to everyone who has been a part of this extraordinary journey. To the memories जो हमने बनाए हैं, and to everything still waiting to be created. मैं हूँ रेणुका, the founder of Masti Media Network. Happy 10th anniversary हमको, आप सभी को, of Masti Media 24/7. Keep listening, keep believing, keep the Masti alive. One network, endless possibilities. Thank you from the bottom of my heart.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: This one comes straight from out of the dancer.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो,
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: Oh, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: What?

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

क्या गाना है, क्या गाना है बॉस, क्या गाना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। आय हाय क्या शुरुआत है। तो भाई

बढ़िया होना चाहिए और काम बढ़िया होने के लिए हम हमेशा शुरुआत क्या करते हैं हमारे आज के शो की. वेल मंडे मॉर्निंग मींस दैट वी नीड ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द एनर्जी एंड ऑल द पुश टू रियली गेट गोइंग फॉर अ फैंटास्टिक वीक अहेड. राइट, तो चलिए बात करते हैं एक बढ़िया सी पॉजिटिव सी. कहते हैं द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. तो अगर आपने 20 साल पहले कोई ऐसा आइडिया या असली में कोई पेड़ नहीं उगाया था तो फिर दिस इज योर टाइम गाइस. यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है सारी सारी दुनिया में, क्लाइमेट चेंजेस एंड व्हाट नॉट. और दुनिया में जब ऐसी चीजें होती है ना तो सिर्फ दूर बैठे नेपाल में या कहीं और लोग नहीं भुगतते हैं, हम भी कभी ना कभी उसके पूरे के पूरे पलट में आ सकते हैं. तो इसलिए क्या करना चाहिए, आज ही जाके एक पेड़ उगाइए, आज ही जाके कोई भला कीजिए, आज ही जाके कोई ऐसा काम कीजिए जो ह्यूमैनिटी के लिए हो, टोटली सेल्फलेस. तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में बढ़ेंगे आगे. देखो जरा Radio Masti 24/7 par Renuka with you on the morning show, guys. Get ready for 3 hours of information and, of course, entertainment at the same time. Beautiful tracks coming your way.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

क्या गाना है, क्या गाना है बॉस, क्या गाना है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। आए हाय क्या शुरुआत है। तो भाई ऑब्वियस है, रेणुका का ही शो होगा, है ना। सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब, ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। रेडियो मस्ती 24/7, जी हाँ, पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर, आपका स्वागत कर रहा है टू द वन एंड ओनली शो जहां पर देश विदेश की खबरें आपको मिलती हैं, राइट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट फॉर द वीक अहेड। गुड मॉर्निंग रेणुका विद यू। भाई जब रेणुका आपके साथ में होती है तो सीधी सी बात है, फन भी है, मस्ती भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काम बढ़िया होना चाहिए। और काम बढ़िया होने के लिए हम हमेशा शुरुआत क्या करते हैं हमारे आज के शो की। वेल मंडे मॉर्निंग मींस दैट वी नीड ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द एनर्जी एंड ऑल द पुश टू रियली गेट गोइंग फॉर अ फैंटास्टिक वीक अहेड, राइट। तो चलिए बात करते हैं एक बढ़िया सी, पॉजिटिव सी। कहते हैं द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो अगर आपने 20 साल पहले कोई ऐसा आइडिया या असली में कोई पेड़ नहीं उगाया था तो फिर दिस इज योर टाइम गाइज। यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है सारी सारी दुनिया में, क्लाइमेट चेंजेस एंड वॉट नॉट। और दुनिया में जब ऐसी चीजें होती हैं ना तो सिर्फ दूर बैठे नेपाल में या कहीं और लोग नहीं भुगतते हैं, हम भी कभी ना कभी उसके पूरे के पूरे पलट में आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आज ही जाके एक पेड़ उगाइए, आज ही जाके कोई भला कीजिए, आज ही जाके कोई ऐसा काम कीजिए जो ह्यूमैनिटी के लिए हो, टोटली सेल्फलेस। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में बढ़ेंगे आगे। देखो जरा रेडियो मस्ती 24/7 पर, रेणुका विद यू ऑन द मॉर्निंग शो। गाइस गेट रेडी फॉर 3 hours ऑफ information and of course entertainment at the same time, beautiful tracks coming your way

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
1: कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी एक सिचुएशन में डाल देती है कि भाई हमें खुद नहीं समझ आता कि हम इतने बड़े हीरो कैसे बन गए, है ना। बात कर रही हूँ कैप्टन स्मिथ मचार की, जिन्होंने हाल ही में फ्लाई दुबई, जी हाँ वही वाली फ्लाइट पे 174 लोगों की जान बचाई, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम हिज ओन एंड हिज क्रू एज वेल। गुड मॉर्निंग, दिस इज रेणुका विद यू। सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show. आपने तो पढ़ा ही होगा कि जब को पायलट ने स्टैब किया, या कह लीजिए हैमर से अटैक किया अपने कैप्टन को ऑन, वो भी कॉकपिट के अंदर मिड एयर, तो फिर उस इंसान ने क्या किया। सलमान खान, शाहरुख खान, जी हाँ, they've taken to social media to laud the bravery of Indian pilot Captain Smith Machar, जिन्होंने सेव किए हैं, जैसे कि मैंने कहा, 174 लोगों की जान ऑन बोर्ड अ फ्लाई दुबई फ्लाइट आफ्टर ही वाज अटैक्ड एंड स्टैब्ड बाय हिज को-पायलट मिड एयर। शाहरुख ने प्रेज किया स्मिथ को फॉर पुटिंग द सेफ्टी ऑफ दोज ऑन बोर्ड बिफोर हिज ओन एंड एक्टिंग विद द करेज डिस्पाइट हिज इंजरीज। एक्स पर लिखते हुए कैप्टन स्मिथ मचार, यू स्टूड स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। इट्स नॉट इजी टू स्टेयर एडवर्सिटी इन द फेस एंड पुट वन सेफ्टी ऑन द लाइन, बट यू डिड जस्ट दैट टू प्रोटेक्ट दोज ऑन बोर्ड एंड शोड अस व्हाट बीइंग अ कैप्टन एंटेल्स। अ ट्रू डिस्प्ले ऑफ करेज एंड ड्यूटी, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। वेल ऑफ कोर्स शाहरुख खान का जो प्रेज है उसके अलावा सलमान खान ने भी लिखा अपने एक्स पर, कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सल्यूट करते हैं। दैट इज सच अ क्यूट मैसेज बाय द वे। एंड शाहरुख एंड सलमान आर नॉट द ओनली वंस बाय द वे जिन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अंदर ही उस ग्रुप में प्रेज किया है कैप्टन स्मिथ को। करण जौहर ने भी फोटो शेयर करी ऑफ कैप्टन स्मिथ एंड सेड इट टेक्स अनदर ग्रेन ऑफ करेज टू बी फाइटिंग फॉर योर ओन लाइफ, बट इन दैट स्प्लिट सेकेंड पुट द लाइव्स ऑफ ऑल अदर्स बिफोर योर्स। सो बहुत सी बातें विकी कौशल, रणवीर सिंह, परेश रावल, आर माधवन, विजय देवरकोंडा और रवि किशन, इन सब ने भी कहा है। आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, खैर। और हमारे सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री जो है भारत के, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बात करी स्मिथ मचार से, वो वाला वीडियो भी है। सो जाके जरूर देखिएगा। इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड, इट इज अ मोमेंट ऑफ लर्निंग, इट्स अ मोमेंट वेयर, मतलब करेज टू द नेक्स्ट लेवल। सुनते हैं गाना और नगाड़े के साथ ढोल बजाते हैं स्मिथ मचार के बारे में। व्हाट एन अमेजिंग गाय, व्हाट एन अमेजिंग गाय, व्हाट व्हाट करेज हैज ही डिस्प्लेड एंड हाउ प्राउड ही हैज मेड ह्यूमैनिटी।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड साइड पे इस टाइम पर बात करनी है, बड़ी सीरियस आफ्टर ऑल चल रहा है द मॉर्निंग शो विद रेणुका जी। हाँ, वेलकम बैक। सुबह का असली वेकअप कॉल द मॉर्निंग शो, और सुबह का जो ये असली वेकअप कॉल है वहां पर मैं आपका इंतजार कर रही थी इस तरफ टू टेल यू अ न्यूज फ्रॉम मनीला। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द मॉर्निंग शो। मॉर्निंग शो में इस समय खबर है फ्रॉम द फिलीपींस। फिलीपींस की अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया है मोर देन 200 फॉरेन वर्कर्स को इन द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रैक डाउन ऑन इलीगल ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स दिस ईयर, ऐसा पता लगा है इमिग्रेशन ब्यूरो की तरफ से। मनीला ने बैन किया फिलीपींस ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स नोन लोकली एस POGOs इन 2024 ऑन द ग्राउंड्स कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये क्राइम ग्रुप्स होते हैं, दे यूज देम एज अ कवर फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, किडनैपिंग्स एंड मर्डर। मिलिट्री और बाकी के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने रेड करे दो एड्रेसेस इन द सदर्न रीजन ऑफ मिंडानाओ ऑन फ्राइडे, और उसके बाद अरेस्ट किया उसमें 110 चाइनीज नेशनल्स को, 2 कंबोडियंस एंड अ हांगकांग रेजिडेंट एट वन साइट, ये पता लगा है फ्रॉम द इमिग्रेशन ब्यूरो। 131 बाकी के फॉरेनर्स जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया द सेकंड साइट हु वर मोस्टली चाइनीज एंड ऑल्सो इंक्लूडेड सिटीजन्स ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। ब्यूरो ने कहा कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड सिम कार्ड्स वर सीज्ड। गवर्नमेंट इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है पॉसिबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड ऑफेंसेज बाय अ नंबर ऑफ दोज अरेस्टेड व्हाइल द रेस्ट विल बी डिपोर्टेड। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि हम इन्फोर्स करते रहेंगे इमिग्रेशन लॉज अगेंस्ट फॉरेन नेशनल्स जो कि वायलेट करते हैं कंडीशंस ऑफ देयर स्टे एंड एंश्योर दैट द फिलीपींस इज नॉट यूज्ड एज अ बेस फॉर इलीगल एक्टिविटीज। व्हाट एन अमेजिंग टास्क। बैंग बैंग के साउंड ट्रैक से एब्सोल्यूट बैंग बैंग करते हुए फिलीपींस ऑफिशियल्स ने पकड़े इन सभी को, एंड वी सर्टनली होप कि सिंगापुर तो बिल्कुल ही सेफ रहे, सिक्योर रहे, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं। ऑलराइट,
1: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: वेलकम हमारे दूसरे घंटे में. जी हाँ, आपका स्वागत है. चल रहा है मॉर्निंग शो 7 बजे से आप और हम साथ साथ गिविंग टू यू न्यूज एंड व्यूज एंड ऑफ कोर्स दुनिया भर की खबरें, उसके साथ एक बॉलीवुड की छोटी सी खबर और साथ में बढ़िया गाने. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू मंडे, इजंट इट? सुबह का असली वेकअप कॉल, द मॉर्निंग शो. आपके असली वेकअप कॉल के लिए आ चुकी है रेणुका आपके पास, और अगली खबर जो है वो सिंगापुर से आपको मिलेगी. 32,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल बिल्डिंग जो कि लिंक्ड है टू कंबोडियाज प्रिंस ग्रुप हैज बीन टेकन ओवर बाय अ लोकल ऑटोमोटिव फर्म इन अ प्राइवेट डील. लेकिन जो प्रोसीड्स है सेल के, दे हैव बीन सीज्ड बाय द अथॉरिटीज इन सिंगापुर. Well, समझ में कुछ ऐसा आ रहा है कि 2 जालान किलांग बारात, which is located in the Bukit Merah vicinity, changed hands for $39 million, and this was in a deal brokered in June and completed in September. Well, this buyer is Jack Speed Holdings, which is a regional automotive company involved in motor financing, retail, leasing, insurance and leather upholstery for motor vehicles and aircraft. And this 99-year lease for the property has at least 36 years left in its tenure, and it was purchased in 2023 by 2JKB, which is a firm set up by the daughter of local businessman Tan Yu Kiat.